जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जान सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस तक लिखिया लिखास।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह है सब त्यावह है तुद जी।

तारा हरत्या बहु संतो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंत

जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावहै हर त्यावहै तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी।

अंध दोष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बाद कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशानत चीटे ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तारत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार।

सिमट पयो शंकर इकैठा। सबरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दोष्ट दुख तो हवा मरे।

कृपा दृष्टो तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा।

वाणी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणे महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो।

की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लही ते आए फिर।

सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंधन जागै प्रभ कै

ईद उपाय हर सिमरन भये सिज्जति दाते हर सिमरन नीच चहुकुंठ जाते हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल आकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर

ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट।

अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र समृत बख्यान योग अभ्यास कर

अनेक प्रकार किए बहुत जतना, हुन दान होमे बहुत रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, माँ उदास तपी सर थीवै, अग्न माहे होमत प्राण, कनक अश्व हैवर भूम दान, न्योली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावै, तो भी हमे मैल न जावै, हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम

करै मनते कबहू न बिखिया टरै जल तू वै बहुदे अनीत सुध कहां होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरै पतित बहुमूच बहुत सियाणप जमका भव व्यापै अनक जतन कर तृष्णा त्रापै पेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिझै

जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा सो गनिए सबते ऊंचा। जा का मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं ले।

आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर ना जान सकोए।

रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साथ छो छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो स्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै।

गोरा, कहा बिसनपद गावै गुंग, जतन करै तो पी सुरभंग। कह बिंगल पर्वत पर पवन,

मुख आवत ताके दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोबिंद भजन बिन

जाओ। रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर देख न काहूं पीन। अवर उपदेसे आप न करे, आवत जावत जन मै मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे मानै। आप है आप, आप करत निबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कच जानै आत्म की रहत। जिस भावै तिस लए लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जपना।

बस प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्वनिधान प्रभ तेरी मया, आपो कछु ना किन्हू लया।

साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटै अवमान, साध के संग प्रकटै सो ज्ञान, साध के संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरनै कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी, साध के संग अगोचर मिलै, साध के संग सदा पर फलै, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कत हुंता वै, साध संग अस्तित मन पावै, साध के संग माया ते पैन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

नौताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबूता वै साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त अगोचर लह साधु कै संग अजर सह साध के संग बसे थान ऊंचे साधु कै संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है साधु कै संग सोतन पावे जिस तन ते सबको वरसावे साधु कै संग सोतन पावे जिस तन ते सबको वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सुबा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पीठ तो होत निहाल साध के संग कलूखत हरै साध के संग नरक पर हरै साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर की गुण गाओ साध कै संग ना मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध

श्रेष्ठ प्रदीप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लाग

पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सबसे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेता अवत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सज्जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी

बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपति कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवतन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पहे अपमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जदि जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस तिस, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस तामस साकत, कई कोट वेद पुराण स्मृत अरसासत,

होए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवह अमर पये सद सद ही जीवह, कई कोट नाम गुण गावह आत्म रस सुख सहज समावह, अपने जन को सास सास समार।

अष्टपदी, जिसके अंतर राज अपमान, सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरे बोजून प्रमावै। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक इहां मुक्त आगे सुख पावै।

तन मंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पचाने, इत उत की ओ सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आपन आप सूझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हरजन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मह सोही निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिये जम की फांसा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मनचित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक

सुभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जब पहे निहाल उनकी सेवा सोही लागे जिसनु कृपा करे वड पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किच करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुभाए।

जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिसमाए समाए ओए सुख निदान उनो बनहाए आपस को जो आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार डाके सिमरन उदरिया नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गाढ़नहार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतिपाल सगल की चिंता जिस मन माहे

नाम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल कट सो है तनमंता होए क्या को गर्भ है जहाँ सब कुछ तिसका दिया दर्ब है अतसूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कह जावे जे को होए बह दातार इस जीवन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को था मैं थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन जो पाखाड़ नाव चढ़तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाछो दूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काए बिल लाइए पूरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तसे चितार जो किछ करे सोई सुखमान ऊला काहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे हो रसलोभी पतंग राम नाम जप हृदय माए नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर

लादखेप संत संचाहल अवर त्याग बिखिया जनजाल तान तान कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए युवा पार विरलावा पारे नानक सा कह सदबलहारे चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडपागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए आने

ते पाया। मृतक को जीवालनहार, भूखे को देवत आधार। शर्म निदान जाकी दृष्टि माए, पूरब लिखे का लहना पाए। सब कुछ तिसका ओ करण जोग, जिस बिन दूसर होवा ना होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ए करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जिन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए ते लोए, जाके हृदय एको होए। सच करनी सच ता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। सलोक रूप नारेक ना रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न। तिसे बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अवनासी प्रभु मन में राख, मानुक की तू प्रीत त्याग। तिस ते परै नाही किछ होए।

मंगल सत जा कह सर्व थोक सुनिए करता कह राज में राज योग में जोगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरख का किरै अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाए सगल देव हारे अवगाहे पिता का

नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बूझिया तिन आया स्वाद प्रभ के रंग रात दिन रहे गुर के भजन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाके संग तरह संसार जन का सेवक सो वट भागी जन के संग एक

चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन पे सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सप्तारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भगता शब्द सुरत सत सत जस सुनता पूजन हार को सत सब कोय नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान जिस मन प्रगटाया पैते निरपो होए बसाना तिस्ते उपजा तिस माय समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको पिन न कहना जाई बूजै बूजन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस कृपा दया सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देवडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गटमित कोई न लाखे प्रभु के सेवक को कहो ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दुष्पक्त आया निकी गिरी में कल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका सास न काटत हाथ अदा को राख देकर हाथ मानस जतन करत बहु पात तिस्ते का तब व्रत है जात मारे न राखे वरना कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच कर है रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख बिडाणी बारंग बार बार प्रभ जपिए भी अमृत ए मान तान त्रपिए नाम रतंजनी गुरमुख पाया तिस कच्छ अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंत्र नाम समाने।

करै भगत आत्म कह चाहे प्रभु अपने स्यो रहस्यमाए जो हुआ हुआ सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने जिसकी मैं माँ कौन बखानो जिसका गुण का एक न जानो आठ पैर पर बसे हुजूर है कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता जिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे तिसके अवर से

पाप अष्टपदी। जब आकार एक काचना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध केस संकमात, जब इसका वर्ण चहन न जापत तब हरक सो कोख से व्यापत, जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम, जब आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुगत को किसको गनी, जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर को कौन उतार, जब निर्गुण प्रभ से सुबाय तब शिव सकत को हो कित ठाए, जब आप है आप अपनी गोतरे तब कवन डर कवन कर डरे, आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अब नाप सी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहाँ बिनासन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए, जब अवगत अवगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेका, जब नाथ रंजन गोग जगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचरजा आपन रूप आप ही ऊपर जा, जह निर्मल पुरख पत होता तय बिन मैल कहो हो क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अपमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तह चल छिद्र लगत को कीस, जय जो स्वरूपी जो संग समावे तह किसे भूख मन तृप्तावे, करण करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन तय वेद देव कहाँ को चीन, जब आपन आप उतारे तब सगन अपसगन कहाँ बिचारे, जय आपन ऊंच आपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, विस्मन विस्मय विस्माद नानक अपनी गत जानो आप, जय अचल अचेत सुमाया उहां किसे व्यापत माया, आपस को आपे आदेश तय गुण का ना ही प्रवेश, जय एक है एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय आपन आप पतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा, जय आप रचियो परपंच आकार तय गुण मैं की नो विस्तार, पाप पुन्न तय पही कहावत को नरक को सुरक पंजावत, आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पैपार, दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार क्यों बख्यान, आपन खेल आप कर देखे खे संकोच तो नानक एक है, जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रसाद, तो पा का आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी, आपे कौत करे अनंत चोग आपे रस भोगन निर्जोग, जिस पावे तिस अपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे।

विस्तार आप कथा आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जा तिस भावे सा सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए तुमते पिन नहीं किछ होए आपन सू सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बनाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंद्र सपना के हाथ दीन दयाल नाथ को ना जिसरा के तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सबसे एक निरंजन राय जिनकी जुगत जा कैसा हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दास दा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो बेआप प्रतपाले जी अनुभो बात जो जो रचो जो तिसहत्यास तिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हाल नानक एक जान्या जन लागा हरेक के नाए तिसकी आस ना बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार।

नानक हर प्रभु आपे मेले। साथ संग मिल करो अनंत गुण गाओ, पद परमानंद राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरंग का ये सुहाओ, आठ प्रभ पर पेखो नेरा, मिटाया ज्ञान बिनसे अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ, हलत पलत दोए ले सुवार, राम नाम अंतर उदार, पूरे गुर की पूरी दिख्या, जिस मन बसै तिस साच परीख्या, वंदन राम जपो लिवलाए, दुख दर्द परमते बो जाए, सजवा पार करो वपारी, दरगैन वह खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माए, बहु नानक बहुर ना आवे जाए, तिसते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार ते आए, निरपव जपै सगल पव मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे, जिस राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवा सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुंचन हार, सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके कार्य पूरा, मत पूरी अमृत दाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सिष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर रूप, तन सेवा सेवक प्रदान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सो होत निडाल, ताके निकट ना आवत काल, अमर पय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंदर गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एकस कटमाय, अनिग्रंग नाना दिष्टाय, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाध अनहत नाथ कह न जाइए, तिस्बात तिन देखा जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रया भगवंत, तरण महाया आकाश प्याल, सर्वलोक पूरण प्रतपाल, बांतिन पर्वत है पार्वम, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसन तरमाए, चार कुंड दह दिशा समाए, किसते पिन नहीं कोठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमरत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कब हूँ डोले, सर्व कला कर खेल है खेल, बोल न पाई है गुण अमोल, सर्व ज्योत में जाती जो तार रहे हो स्वामी ओत पर दोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में एहो विश्वास, संत जना का पेखल सब परम, संत जना के हृदय सब परम, संत जना सुने सब वचन, सब व्यापी राम संग्रचन, जिन जाता किसकी ए रहत, सत वचन साधु सब कहत, जो जो हो सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बार भी होई, नानक दर्शन देख सब मोई, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, जिस पावेता करे विस्तार, तिस पावेता एकंकार, अलिक करा रखी ना जाई, जिस पावे तिस लय मिलाई, कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप वाप पर पूर अंतर्गत, इस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप वर्तारा, सर्व नैन आपे खनहारा, सगल समग्री जाका तना, अपन जस आप ही सुना, आवन जान खेल बयाना, आज्ञाकारी ती नी माया, सबके मत अल्प तो रहे, जो किच कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए, इसते होए सो नाही बुरा, उरा कौ हो कने किच करा, आप ला करतू तत्ने की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साथ, ओत पोत आपन संग्राज, ताकी गत मित कही न जाए, दूसर होए तसो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एव जान, जो जाने तिसदा सुख सोए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का ऐ सुहाओ, जन कै संचित आवे नाओ, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो साध, सगन अगन सागर करो, हर तन के पर ले हो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार,
खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधारो दियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हेदार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत हो तुतार आप तरह लोक के निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद बाजे सुन सुनन करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल मात के माते नानक उदरे तिनके साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साथ संग लेन सो प्रसन्न प्रसे पए गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत साफ जाने का घर चीत सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रगाढ़ पूर्ण प्रग सब लोए सबते ऊच पाए स्थान बहुर न हो वया मन जान हर तन का हाट जले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिज नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वते सिद्ध विद्या तप जोग प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल बगा सब कह मगल सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता हे फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकि गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कह मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जमते छूटे जाके मस्तक कर्म पर पाए साध सरंग नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ जीत जन्म मरण ता का दुख निवारे दुर्लभ दे तत्काल उदारे निर्मल शोभा अमृत ता की बाणी एक नाम मन माय सुमानी दुख रोग बिनसे पे परम साध नाम निर्मल ताके करम सबते उच्चता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुख मनी सबते उच्चता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तथ नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तथ घाट घड़िया बहुत अनूप ता कि गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तथ घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तथ घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तथ होर न कोई होर तथ जोध महाबल सूर तनमह राम रहया भरपूर तिथ सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठगे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथ भगत वसह के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर विखे नंदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम दवै तिवकार वेख्या विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सच्ची टकसाल।

सदैव मानत ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जन ही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सुजानी कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बक्र फिर चत्र चकमान नहीं पुरतीन लोक चौदह के बिख्या जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचो स्वम पव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत अलख पेश अंग राग न रंग जा कह जात पातन नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जान ही जे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवहि वह चेत मद पार संत व प्रसाद

ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पात के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे भगत ध्यान लगायो नहात फिर लिये सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लियो सवै जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु साहब जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबीर बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर्शा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुमकावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज करदा करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ को वरण त्याऊं जो बरचाऊं सु तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे वो भरी है मरण काल का त्रास में भरी है हुजो सदा हमारे पछा श्री अस तुझ जू करे हो रछा राख ले मोय राख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तमहपुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा

तहें हमारा जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझो, हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरण को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उद्गर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या करख करता हूं कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है। आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरियालम।

आप अपनि बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंग पयो राव कहि भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उदभुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण घाता जे अस्तुज तब सरणी परे तनके दुष्ट दुख्त हवा मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सपटारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आए है रिछा हुए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट तरह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रेंद सिद घर मोसम होई दुष्ट शाश हो सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़क केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता कलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को शय करता श्री अस्तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांसत फल पावे सोई दुख न दिसे व्यापत कोई अड़ेल सुने गुंग जो आहे सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तर नरके रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहस पुण तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रव वारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधार

कह नानक सदा गाव हो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी दा कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे।

जन जागे जिना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनों आन दिन हरल विलागै जागत रहन विहाणी।

कहो पोहे न सकही, जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है। कह नानक एवड़ दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उधर में है तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जात सुपाणा

प्रमुख माहे हो मैं बंदना फिर जो नी पाहे हो मैं कितों पजे कृष्ण में जाए हो मैं दीर्घ रोग है हो मैं हो हुक्म है प्या कि

समझाए। खिन मैं था पू था पदा तिस बिन नहीं कोई, हरन भरन जाका नेत्र फोर। एक छिण दे विच रचन वाला है, एक छिन विच खत्म करन वाला है। तिस बिन नहीं कोई, भई ओदे तो बिना कोई दूजा है ही नहीं है। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। वो किथे है साहब? कहिंदे खंडा विच भी है, ब्रह्मंडा विच भी है, थले पताल विच भी है, सत दीपा विच भी है, समुंदरा विच भी रविया होया है। इयों बोल कह लईए, जल थल महियल पूरिया स्वामी सरजन, हार अणक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। इयो कह लईए, सबै कट राम बोले रामा बोले राम, बिना को बोले रे। एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घाटो घट राम समाना रे। इयो कह लईए, घट घट मैं हर जो बसै संतन कहो पुकार। जिस आप बुझाए सो बुझ से निर्मल जन सोई, पर सोझे कनू आदिए जिनू आप कृपा कर देवे। नहीं तो बंदे नू ज्ञान आउंदा ही नहीं है, सारी दी सारी उम्र इदां ही लंघ जांदी है। जिनू ज्ञान मिल गया गुरु कोलो, जरे जरे चो परमात्मा नू वेख लिया है, निर्मल जन सोई, ओ सेवक निर्मल हो गया है, भाव के पवित्र हो गया है। अमृत वेले सतगुरु महाराज ने अपार कृपा की, गुरमुखो तख्ता से प्रकाशमान होके खुले दीदारे बख्शे ने। अते अमृत वेले तो बेअंत गुरमुखा ने सतगुरां दे दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। शरीर करके बैठे हो, मन करके बैठे हो, सब दी हाजरी प्रवान। अमृत वेले पावन मुख वाक साहब जी बख्शिश होए सन, सांझ पाउण दा निमाणा जिहा जतन कीता है, बेअंत भुल्लां दियां माफियां। लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप है मेले। प्यार सहित आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती। मन वजिया वाधाई आ, राग रतन परवार, परिया शब्द गावण आई आ, शब्दों ता गावो हरी के रात।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासुदेव पाची दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय, फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से भाई सहाय, अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमर है करना उन्हें दयावता है, सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय, दसा पाची ने पुत्रराज मखरू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार अंतर के खालसा से। बोलो जी वाहेगुरु। श्री महाराज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां, जिन्हें नाम जपिया वण चख्या दे चलाई ते वाही दे के डेढ़ किया तेना प्यार सत्यार की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघनिया धर्म हे सी दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लाइया चरखड़िया से चढ़े आ रहे नचराए गए, गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं आ रहा, किसी देखे सत्संग आया तिना की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। भाया तख्त गुरुद्वार होता ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता वै चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां गुरु खालसा साहब का विचार आए दे टेक की फतेह मृत की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुगुरे अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत के रखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंद सदस्य आज दार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जे पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की आदत सेवा संभाल दता खालसा जी बख्शो ये ओटिया की ओट गुरु न्यास गुरु धन धन गुरु को दार पिता जी दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास। ये गरीब नवाज जी आपके चन कामला अरदास जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश मान हुए संगतों को दर्शन दर्द के निहाल मेहनत बाणियों के पाठ आज भी रागी संघा ने आपके चरणा जा सकी वार के कीर्तन किए ने विद्वान भी उन्होंने अज के हुक्मनामे की कथा प्यार की कृपा करो हुई भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ वे बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत की हिरदा निशान की पासा करो जी अगो तो शुद्ध पितरवाणी टाणी बल बुद्धि बख्शो करो आज इस खुशी में आप दिया बच्चिया दाता पुत्र कलाम शाह जी देगा तैयार कर खान दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संघ की रचना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगा का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश दे रखा बख्शिश करो जी इन कृपा करो आप जी बख्शिया दाता जो लगने तुर सवारी प्रबंध कर ले दतार अमृत वे तो लैके दर्द आईया साफ संगतों की हाजिर दर्द प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर्द देते फुल पेटा बना शुभकामना पूर्ण करो जी गिनवाज आप चरणा सेवा कर रहे सारे टहरी सिंह सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकल बख्शो अभी सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शिश बालता करो गुरु गरीब नवाज बख्शिश करो दतार जी मेहनत कराओ खालसा पंथ सिख कौम एकता स्वाग प्यार की बख्शिश करके सब तो दाज बख्शो चैनल ना जोड़ो गुरु का प्यार बख्श दतार हर मैदान जवान फद बख्शिश पालता करो जी ये गुरु सत्य पाचारियो अदर के सेवा परिवार दतार जी बती हरविंदर कौर तंदुरुस्ती वास्तव सुख शांति वास्तव चारिका वास्तव बेनती कर दिया बेहद माला के हर दास प्रवान करो बख्शिश कर दिया बची हरविंदर कौर तंदुरुस्ती बख्शो गिर नवाज हरविंदर कौर तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो धर्म देश कौम दे आज्ञाकार बख्श कर दतार चाढ़ी कला बख्श करके तंदुरुस्ती बख्शिश करके गरीब नवाज अरोगदारी दाज बख्शिश करके चाहना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शा निभाता करो दतार सेवकों के सारे परिवार में तंदुरुस्त सुख चाँडी चाढ़ी कला करनी चाहना जोड़ना गुरबाणी का प्यार बख्शी करना कमाइया सफल करो जी गुरु गरीब नवाज मेहर करो दूर दुराने कराने बैठी लाइव कथा की सरण करनिया सारे संगतान की हाजिरी प्रवान करो घड़िया लेखे लाओ तारा में कृपा की जिस उद बख्शे संगत आदि चाहना धनवाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेहद आने गुरु घर गुरु घर गरीब नवाज आप गुरु घर के सेवादारा
ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵਾਦ ਵਿਵਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਰਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਦਾਤਾ ਹੀ ਲਾਤ ਵਿਵਤਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁਲਤ ਕਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿਤਰ ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਵਰਨ ਲੜੀ ਵਾਰ ਸਿਆਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ਤਰਵਾਜ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਦਾਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ

गुण साधी तिन स्यो करी, हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई। बलिहारी सतगुर तिस जिन सो

अंतर तृष्णा भुख है, मूर्ख भुखिया मुए गवार। सतगुर सेवै सुख पाया, सच्चै शब्द विचार। अंदरो तृष्णा भुख गई, सच्चै नाए प्यार। नानक नाम रते सहजे रजे, जिना हर रखिया उरतार। महला तीजा, मन मुख हर नाम न सेवया, दुख लगा बहुता आए। अंतर अज्ञान अंधेर है, शुद्ध न काई पाए। मन हठ सहज न

से हर हर नाम रते मन माही। जिना मन चित एक आराध्या तिना एक बिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेव दे जिन तुर मस्तक ले।

मर घड़ लो सब लोग कुटुंब भयो आ गए हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया

कहने हैं ना भाई, सब तो महंगी जमीन फतेहगढ़ साहब है, सब तो महंगा दूध भी उथी प्याया गया। मोती राम मेहरा किन्ना दूध प्याया होना, अद्धा किलो किलो दो गिलासा विच, किलो दूध का मुल पता किन्ना तारना पिया, एदे पूरे परिवार नू कोल्लू विच पेट दिता सी। मोती राम मेहरा पहला एदे धी बच्चे परिवार नू जदों एदी वारी आई ना, ते खून नाल टोवा भर गया, ते फिर भी इस सेवक दी भावना वेखो, कहिंदे इन्ना ते मैं दुध भी नहीं पिया सी, फिर भी मेरी घट सेवा हुई है, जिन्ना मेरे बच्चियां दा खून डुलिया इन्ना मैं दुध नहीं सी पिया, ये सस्ता ही है। अद्धा किलो दुध इंडिया विच किन्ना होएगा, 70-80 रुपए किलो होएगा, इत्थे 1-2 डॉलर नू होएगा, पर किड्डा महंगा दुध है, जिथे जमीन महंगी पई, सोने दियां मोहरां। ऐसे महान सेवक भी माता गुजर कौर कहंदी है, वे मोती मेरा, दुनिया दे सारे मोती तिना दी चमक फिक्की पै जाएगी, पर तेरे नाम दी चमक साहबजादियां नाल वधदी रहेगी, वधदी रहेगी, तेरे बच्चे तेरे परिवार सचखंड विच साडे नाल ही रहणगे। ऐसी भावना बनाइए। तीसरे दिन माता गुजर कौर जदों भेजदी है ना, भी पता लग गया अज दीवारा विच चिण दिते जाणगे, ते फतेह सिंह वापस आए रस्ते विचों, कहंदे ने माता दादी मां तुसी रोज कहंदे सी 2 दिन मैं उड़ीकांगी, अज बोले नहीं, तुसी कल भी परसों भी आख्या सी मैं तुहाडा इंतजार करांगी ठंडे बुरज विच, अज क्यों नहीं बोले इंतजार वास्ते? दादी मां कहन लगी, अज तुसी इंतजार करियो मेरा, मैं तुहाडे कोल आवांगी। सो ओ किते नहीं गए, भावना बना के उन्हां दे अगे मन तन धन सरेंडर कर दिओ, आत्म समर्पण, ते फिर प्रेमा नाल हिरदा भर जाएगा।

करो कृपा एक बार, एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत बड़ा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही है, सो बेनती है एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना, असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आप गाण वास्ते आए हैं, फिर एक शब्द की हाजिर होर भर के बहुत ही सत्कार हो गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा जी, वह भी पहुंच चुके हैं, दस दिन के बाद उन्होंने हाजिरी भरनी है। सो करो कृपा उची आवाजाएं चो।

उस सेवक को कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक के सिर पर सतगुरु का हाथ होता है। सतगुरु जी वाणी च फरमान करते हैं, सब सह ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे है थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुरु की सब दे ऊपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है जिदे ते सतगुरु की प्रसन्नता है, सतगुरु जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। उस अपने सेवक दे ये लोक ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुरु दी नजर करेरी है। जो सेवक सतगुरु नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारियो, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुर्लभ है, होए ना बारे बार। ईमान सुजन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारियो, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए, उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उसनूं कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वो भगती करके तेरी असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ए मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इसनों मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इतने इसनों सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहते हैं कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटकै से आए जाए दुख पाएगा। जदों ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जाण दा गेट बन जाएगा। फिर की होगा? केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियां दियां, पशुआं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेन ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौन दी भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसे दे दर ते कदी किसे दे दर ते, तू उस परमेश्वर दा हो जाए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, जदों तू परमेश्वर दा बन जाएगा सारा संसार तेरा बन जाएगा।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,